Suntem number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Ab sunie.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहामूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Danisha.
1: Danisha. अरिजीत सिंह और प्रिया सुरैया की आवाज में जैसे मेरा तू शेफ मूवी से ब्यूटीफुल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। तनिषा आ गई जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। मैं ऑल ओवर रिचार्ज पे जा रही थी दोबारा से, आई डोंट नो, ऐसे मेमोरी फ्लैश हो गया, यू नो कोल्ड हुआ तो शायद दिमाग पे असर हो गया। वेल अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान, 22nd ऑफ सेप्टेम्बर है आज, ट्यूजडे का दिन। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कल का दिन कैसा रहा आपका, आज के क्या प्लान्स हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सब जानना चाहती हूँ। एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजकर पेश ही तो लगा दो यार एक बार।

0: वही तो बात है, इसीलिए तो बार बार कहती रहती हूँ कि मुझे बता तो दो कि आप मुझे सुन रहे हो।
1: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए बिछोरी बोले से।
2: यार कमाल ट्रैक है यार ये तो।
0: धूम एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फुल नॉस्टैल्जिक हिट होने वाला है।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई।
0: ये आपकी और मेरी बात हो रही है आपको पता है ना, तो आओ फटाफट से मैसेज करो 3311-1063 पर। एंड दोज हु आर ड्राइविंग राइट नाउ इट्स ओके, आई विल वेट। आप अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंचिए, एकदम यू नो केयरफुल होके ड्राइव करने का है, फ़ोन वो नहीं यूज़ करना है वाइल ड्राइविंग। बस मुझे सुनते रहो, मैं हूँ आपके साथ, बढ़िया गाने चला रही हूँ अभी, मोहित चौहान की आवाज़ में भेज रही हूँ बेबी डू और डाई से कौन है वो। सुन रही है रेडियो 106.3 FM जी, बिंदास मेरी जान।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनीशा
1: तनीशा जितनी आसानी से अरिजीत सिंह ने कह दिया इतनी सी बात तो नहीं होती है ये, है ना। Y'all listening to Radio 11.6.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर मैसेजेस पढ़ लेते हैं भाई। नाजरी जी का मैसेज आया है, अ ब्यूटिफुल डे इज वेटिंग फॉर यू, गुड मॉर्निंग, आई होप वी ऑल हैव अ ब्यूटिफुल एंड फंटास्टिक डे। एंड अबरार जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है। मलिक फारूक जी का भी गुड मॉर्निंग आया है। संधु जी का भी मैसेज है यहाँ पे, एंजॉय योर डे एंड बी हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू everyone and give you smiles, attention and dreams. God bless you all. Aage may God likhna tha, may God give you smiles, attention and everything. And Shashikant Patil ji ka bhi message hai. He says, half of our problems are by expecting good things from wrong people and the other half by searching wrong things in good people. So true. Ye na der se samajh mein aata hai, but jab samajh mein aa jata hai aur amal kar lo na to zindagi kafi aasan ho jati hai. And we have Zulfi ji ka good morning. He says, no power in the world can defeat a person who has good friends, good relatives and good thoughts. Good thoughts pe main zyada focus karna chahungi kyunki I think friends or relatives ka obviously hamare upar bahut zyada effect hota hai, lekin sabse zyada impact jo hai hamari thoughts hi dalti hai hamari har cheez pe, so uska khayal rakhna bahut zaruri hai. Rajiv ji ka message aaya hai, kisi se umeed kiye bina uska acha karo kyunki jo log phool bechte hain unke haathon mein khushbu aksar रह जाती है। This is so profound, so beautiful and so deep. मतलब you know they say कि आप वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाटएवर यू आर गिविंग टू पीपल ना, दैट इज हु यू आर, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो अगर आप प्यार बांट रहे हैं तो वो क्योंकि आपके पास इतना प्यार है देने के लिए, सो जस्ट बी काइंड। और जब आप यू नो काइंडनेस और उस वॉर्म्थ और लव के साथ आगे बढ़ते हैं एंड यू यू नो ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल, कोई ऐसी चाह के भी किसी का दिल नहीं दुखाते, चाहना तो कभी चाहिए ही नहीं, अनइंटेंशनली भी किसी का दिल नहीं दुखाते, सो यू मैनिफेस्ट ऑल दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ और वो आपको टेन फोल्ड्स में मिलती है। एंड दिस वर्क्स यार, दिस इज 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ काम करती है। जब आप साफ दिल से कोई काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, किसी का दिन बना देते हैं, प्यारी सी स्माइल दी, आपका पूरा दिन इतना बेहतरीन जाएगा ना, आपको हर जगह टेन फोल्ड्स में वो स्माइल मिलने वाली है। आई एम टेलिंग यू, आज स्माइल से ही शुरू करके देख लो, फिर बताना कल मुझे कि तनीशा ऐसा हुआ था या नहीं। ठीक है, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून एंड जियो विद अस।
2: ऑसम
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। ऑसम

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में धूम से दिल बराउली ऑन रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम तनीषा आपके साथ पिताज मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड ये जो धूम मूवी में अली का कैरेक्टर था उदय चोपड़ा ने जो प्ले किया था ख्याली पुलाव जो एक सेकंड में पका लेते थे, जिस लड़की ने प्यार से बात करी भाई उसे शादी के सपने देख लिए. हम भी करते ना ऐसे, नॉट शादी के सपने, नो, बस रैंडम चीज़ों पर ख्याली पुलाव पका लेना है ना, होता है. आई टू डू दैट अलॉट. मतलब से आई थॉट कि आई वेंट टू शॉपिंग, मैंने एक ड्रेस बस देखी है अभी, मैंने उसको प्राइस भी जाके चेक नहीं करा है कि वो मेरे बजट में आ भी रही है या नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं करी है कि मैं इसे इसमें मेरा साइज है भी या नहीं. आई स्टार्ट थिंकिंग अरे मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ये पहन सकती हूँ, मैं इसे इस तरह से डिज़ाइन करूँगी, स्टाइल करूँगी और मैं इतनी सुंदर लग रही होंगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड देन एंड में या तो साइज नहीं होता है या फिर वो बजट के बहुत ही बाहर होती है. एंड आई थिंक ये चीज़ें हम सब करते हैं. वेल देर इज दिस रियली अमेजिंग जापनीज लेजेंड विच सेज इफ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन. ठीक है, इफ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन द लॉन्गर यू वेट द मोर द वे बैक विल कॉस्ट यू. एंड इट इज नॉट अबाउट ट्रेन्स, इट इज अबाउट लाइफ. जी हाँ, अगर कहीं पर भी आप अपनी जर्नी में कहाँ पर किसी भी रास्ते पर पहुँच चुके हो, किसी भी स्टेज पर पहुँच चुके हो, अगर आपको लग रहा है दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, इमीडिएटली गेट ऑफ दैट स्टेज. बिकॉज क्या फ़ायदा है, ये रिग्रेट बढ़ता जाएगा टाइम के साथ और जो चीज़ यू आर मेंट टू डू आप उससे और दूर होते जाओगे, उसमें और ज़्यादा वक्त लगता जाएगा. इवेंचुअली आपने घूम के वहीं पहुँचना है, विद वट एवर इज़ मेंट टू बी डन बाई यू ना, वो आपने घूम फिर के करना है. या तो आप एक डिटोर लोगे लंबा सा उसके बाद आओगे, या फिर अगर आपको इमिडिएटली अभी रियलाइज़ हो रहा है और आपने उस पर एक्शन ले लिया तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. जस्ट ए रिमाइंडर फॉर यू इन दिस मॉर्निंग सेंडिंग फिर मोहब्बत इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद इरफान. स्टे ट्यून्ड एंड ट्यून्ड विद अस.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

आबिदा परवीन और राहत साहब की आवाज में क्या कमाल गाना यार। कुक स्टूडियो से छाप तिलक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और ये जो हमने सुना ना गाना, दिस वॉज एक्चुअली द रिहर्सल। सो द रिहर्सल वॉज सो ब्यूटिफुल, सो फ्लॉलेस एंड परफेक्ट कि जो डायरेक्टर्स थे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम तो यही रखेंगे, हमें चाहिए ही नहीं फाइनल टेक, लेट इट बी। So weather is 31 degrees right now and it feels like 40 degrees. क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ है? जब ये 40 होता था तो ये हमें 43, 44 के नीचे नहीं फील करवाता था। अब ये 31 है तब भी ये 40 पे रहा है, भाई थम जाए यार। साथ में हवा जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 38 हो सकता है, लोएस्ट 31 अभी है ही। मैं आपके लिए एग्जाम्पल हूँ कि इस वेदर में कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आप मेरी पोजिशन पर आ जाओ इस कोल्ड के साथ। बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट कर पाना इतना डिफिकल्ट काम हो गया है बिना कफ किए या फिर बिना रुके, क्योंकि नाक बंद हो गई है, कभी एक साइड से बंद हो जाती है कभी दूसरे साइड से बंद हो जाती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मेरी जान, एंड मेक श्योर कि यू नो बहुत सारा फ्लूइड ले रहे हैं आप, पानी वानी पी रहे हैं, और साथ में ऐसे ठंडा गर्म वाला सिचुएशन मत करो कि गर्मी से आए हैं एकदम बाहर से और एसी के नीचे खड़े हुए हैं, ठंडा पानी पी लिया है फ्रिज से निकाल के। डोंट डू दैट प्लीज, ख्याल रखो यार अपना। हाँ, एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: यानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness. Up fitness, pakki hai.

0: तन्निशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

पैपॉन की आवाज में अहम नवा फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी तनीषा के साथ सुना अपनी रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है अबर सो आज का मेरा लेम जैम्स का सवाल एकदम आसान है और ये मुझ पे एकदम फिट बैठता है क्योंकि मैं कमरे के अंदर भी हूँ और मैं सिक भी हूँ सो द क्वेश्चन इज अगर कोई बीमार कमरे के अंदर हो तो उसे क्या कहेंगे अगर कोई बीमार इंसान एक कमरे के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे हिंट में दे देती हूँ कि एक वर्ड का आंसर है एंड इट इज़ अ नेम अगर कोई इंसान बीमार हो और वो कमरे के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे मेरा सवाल है इस वक्त तो तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया हां जी धुरंधर मूवी से ज्योति नूरा की आवाज में और इसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ लव द मूवी लव द ट्रैक किसका

3 1 1 1 0 6 3 पर कि अगर कोई कमरे के अंदर बीमार हो जाए, मतलब कोई बीमार है और वो कमरे के अंदर हो, तो उसे क्या कहेंगे? मैसेज कीजिए फटाफट से और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: Pasar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Geo Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
0: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
2: Hi guys, this is Abhar Chetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: ज्योतिर के आवाज में धुरंधर से तेरिश के नहीं आ रहा है नाच न जाए ऑल ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं अब तो मेरा जो सवाल था लियाम जेम्स का वो था कि अगर कोई बीमार हो और वो कमरे के अंदर हो तो उसे क्या कहेंगे एंड द हिंट वाज इट इज जस्ट वन वर्ड एंड इट इज अ नेम एंड आई हैव गॉट द आंसर्स यस विजय जी का मैसेज आया है मुझे शाह का मैसेज है एम एन ए का मैसेज है एंड देर इज संदीप फैजल जी का मैसेज है अथरा का मैसेज है देन देर इज जिया देर इज मोहम्मद देर इज वाहिद एंड सब के जवाब सही है दोस्तों यस द करेक्ट आंसर इज सिकंदर एंड मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे मेरी लेमनेस में मेरा साथ दे देते हो ना मेरा दिन बन जाता है यार तो इसके लिए थैंक यू है मेरी जान इसी बात पे आप डिजर्व करते हो एक जबरदस्त हिट जो कि भेज रही हूँ मैं आपके लिए आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की आवाज में लैला मजनू से ओ मेरी लैला स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: फाल्कन फिटनेस मैसिव सेवेंथ ब्रांच इज नाउ ओपन एट अल्ड्रियान. हाईटेक जिम, किलर वर्कआउट एंड एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस. फाल्कन फिटनेस, अब फिटनेस पक्की है.
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरो की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं. सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लवली
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस All visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
4: Alshark Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
2: at QNCC Hall No. 5.
4: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
2: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this, don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
1: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
0: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.theqatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: ऐसे कमाल गानों के लिए भी मेरे साथ ही बने रहिए ओनली ऑन रेडियो ऑलिव थ्रियो बिंदास
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
1: कूल सॉन्ग

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness. Ab fitness pakki hai. स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए. The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर. Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bin das morning chal rahe hain par. So, आज हम जानेंगे कि टेनिस ब्रेसलेट सुना होगा ना आपने, एक डायमंड का पतला सा ब्रेसलेट, उसको टेनिस ब्रेसलेट बोलते हैं एंड लेडीज आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट इट. अब तो नेकलेसेस भी आने लग गए हैं उस नाम से. तो ये नाम कैसे मिला उस ब्रेसलेट को? कोई इंटेंशनली कोई ज्वेलर बना रहा है और वो ये सोच के तो नहीं बना रहा है कि भाई इसका नाम हम टेनिस ब्रेसलेट रखेंगे. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. यस, सो 1978 में मैच चल रहा था टेनिस का एंड लेजेंडरी क्रिस एवर्ट वाज प्लेइंग और शी वाज वेयरिंग अ पतला सा डायमंड का ब्रेसलेट. ठीक है, और खेलते खेलते एकदम से उनका ब्रेसलेट गिर गया, मैच बीच में रुक गया. सबको लगा कि शायद यू नो समबडी इज हर्ट, कुछ हो गया है, कोई इंजर्ड है, पर नहीं, क्रिस का जो ब्रेसलेट था वो बहुत प्रेशियस था, डायमंड का था, और वो गिर गया था. उसे ढूंढने के लिए उस मैच को रोका गया था एंड इट बिकेम यू नो हेडलाइंस इन एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ वी गॉट द नेम टेनिस ब्रेसलेट. सो या एनी ब्रेसलेट विच हैज छोटे छोटे डायमंड्स यू नो ऐसे इन सीरीज इन लाइन, दैट इज टेनिस ब्रेसलेट फॉर यू. एंड इट इज क्रेजी कि किस तरह से वो जो ब्यूटिफुल और आइकॉनिक ज्वेलरी पीसेज हैं वो अपने नाम से जाने जाते हैं और हमें उनके पीछे की स्टोरी भी नहीं पता होती है. नाउ यू नो. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
2: Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्टी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Nisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, the Nisha Aapke Saath Bindaas Morning Chal Rahe Hain. Haan par China is at it again. Kuch bahut kamal kar rahe hain wo. So China has started putting scientists ki pictures on billboards instead of putting celebrities or actors ke pictures on there. Because unka kehna hai ki agar bachcho ko inspire karne ke liye hi kuch lagana hai hume yahan pe, to kyun na un logo ko dikhaya jaye jinki wajah se hamara future jo hai wo behtar ho raha hai. जो एक्चुअली सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे हैं, दैट इज सच अ गुड थॉट. एक्चुअली ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हम कितनी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को एफिशिएंट बना दिया है, पर हमें पता ही नहीं है उसके पीछे की स्टोरी कि वो कहाँ से आई है, किसने बनाई है, किसका आइडिया था. सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक, एंड अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो फॉलो द सूट. लेट्स होप दे डू. फिलहाल बढ़िया गाना भेज रही हूँ आपके लिए, सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ थ्री बिंदास.
0: Radio Olive Bar. Song of the Hour.

0: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
1: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
0: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं, सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.theqatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और भाई आखिरी घंटे में पहुंच चुके हैं हम।
1: मैं तो हुआ तेरा
0: मुसाफिर कैफे से, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर मुसाफिर कैफे का सीजन टू, कि आगे क्या होने वाला है। बुक तो देखो पड़ी हुई है तो मुझे बुक का पता है, बट वी नेवर नो कि यू नो सीरीज में ये लोग क्या कर

और रॉक स्टार से आ रहा है ये कमाल गाना. ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू. सो देयर इज रेडियो ऑलिव. कुछ ही देर में लौट कर आती हूँ और आज के वर्ड के बारे में बात करते हैं. जियो बिंदास.

0: unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Hi, this is A.R. Rahman.
2: A.R. Rahman.
1: Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one Radio Olive.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: तनिषा
1: सुरेश वाडकर और आशुताई की आवाज में सत्या मूवी से सपने में मिलती है ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अबर
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: और आज का जो वर्ड है मेरी डिक्शनरी से जो मैं लाई हूँ वो है पार्सिमोनियस PARSIMONIOUS पार्सिमोनियस एंड इसका बेसिकली मतलब होता है अ पर्सन जो कि बहुत स्टिंजी है और एक्सट्रीमली अनविलिंग है टू स्पेंड मनी इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल दिस पर्सन माइजरली और फ्रूगल और कंजूस बेसिकली So, example, he was so parsimonious towards his friends that they stopped inviting him for parties. Or the company's parsimonious nature did not go down well with the employees. These could be the examples. Next time, jab aap kisi kanjoos dost se mile, aur bole, bhai, aaj ki treat teri taraf se. तो कहना ब्रो स्टॉप बीइंग सो पार्सिमोनियस ओके आई नो किसी ना किसी का नाम तो आ चुका होगा जहन में उन्हें लिख के भेज दो पार्सिमोनियस अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं एंड यू हैव दैट रेपो कि आप जोक कर सकते हैं ठीक है वरना लड़ाइयां हो जाएंगी मेरा नाम आ जाएगा सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास
2: अब सुनिए

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas. Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेस की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

अदनान सामी और सुनीति चौहान की आवाज में अजनबी मूवी से महबूबा ओनली ऑन रेडियो ऑल एप 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और पूरा सोशल मीडिया रेक्स की बातें कर रहा है दो दिन से है ना. हर जगह इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएं तो रेक्स का ही चर्चा चल रहा है. पीपल हैव स्टार्टेड यू नो प्रमोटिंग देयर बिजनेसेस इस ट्रेंड को लेकर कि भाई पीपल आर लुकिंग फॉर रेक्स और उसके बदले में 100,000 रियाल का जो रिवॉर्ड है वो रखा गया है. दे हैव मेड फुल बिजनेस स्ट्रैटेजी अराउंड इट एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. बाकी रेक्स का अभी तक कुछ पता चला नहीं है. सो द 100,000 रियाल का जो रिवॉर्ड है इट्स स्टिल ऑन द टेबल गाइस. सर्च जारी रखिए. अलोंग विद दैट अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो radioalive.qs the handle फॉलो कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों भाई बंधु सबको बता दो कि अगर ऑलिव को आप लाइव सुनना चाहते हैं तो आपने बस कर लेनी है हमारी ऐप डाउनलोड. आप जहां भी हो दुनिया के किसी भी कोने में यू कैन लिसन टू अस लाइव थ्रू आर ऐप. प्ले स्टोर पर जाइए, रेडियो ऑलिव का ऐप है, डाउनलोड कीजिए और बस कनेक्टेड रहिए. सो रेडियो ऑलिव, थ्रू बिंदास.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. वेंसडे का दिन होगा, खुशी थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि वीकेंड नजदीक है. यस, आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. कोई भी छोटी मोटी बात हो तो ऐसे दिल से या दिमाग से, दोनों से नहीं लगाने का है, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से जाने देने का है. ठीक है, इसी में भलाई है यार हमारी. फालतू बैठ के सोचते रहते हैं और अपना ही मूड खराब कर लेते हैं, अपना ही दिन खराब कर लेते हैं. सो जस्ट डोंट डू दैट. एंड प्लीज वेदर से ज़रा बच के रहिएगा. डू नॉट गेट अंडर द वेदर, जैसे मेरा हाल रखा है इस वक्त. बहुत सारा फ्लूइड लीजिए, पानी वानी पीते रहिए और लाइट खाना खाइए. और अगर धूप से आ रहे हैं तो ठंडा पानी ना पिए, एसी के नीचे ना खड़े हो जाएं. ख्याल रखें अपना, सेहत है तो सब है. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

Good morning. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Yes, Life Must hai. Subah utne ka na apna ek alag feel hai. You know, वैसे तो मैं हर दिन आपको Midnight Lounge पे मिलती हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं life की, Bollywood की, fashion की, trivia's की, nostalgia की, कहानियों की. और आज सुबह जब मैं Life Must में आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार सुबह जल्दी उठने का भी अपना एक अलग feel है, जहाँ पर आपके सारे काम बड़े टाइम से हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि बस ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब ऑफिस में ये करना है, वो करना है. अलग ही क्रिएटिविटी रहती है जब आप सुबह जल्दी उठते हो. बाय द वे, हर किसी का अपना एक क्लॉक सिस्टम होता है कि इतने बजे उठेंगे तभी जाके फ्रेश फील होगा, वरना अगर इससे पहले उठ गए तो अच्छा फील नहीं होने वाला. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान, और व्हाट्सएप नंबर सेम 3311106. खूब सारी बातें

करने वाले हैं। बाय द वे, आपको पता है यहाँ पर मैं बात कर रही थी कतर टूरिज्म और ओल्ड दोहा पोर्ट ने ना अभी स्पेन में जो क्रूज में 2026 हुआ था वहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटर्स के साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन किया है। फोकस है कतर को ग्लोबल क्रूज आइटनरीज में और स्ट्रांगली कनेक्ट करवाना, जहाँ पर ओल्ड दोहा पोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर, कतर की एयर कनेक्टिविटी, होटल्स और टूरिज्म एक्सपीरियंसेस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। एंड आई वाज लाइक यार यहाँ पर कितना कुछ होता रहता है ना। सो क्रूज पैसेंजर्स जो हैं वो सिर्फ शिप से उतरते नहीं हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं, टैक्सी लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, साइट सीइंग करते हैं और फिर वापस शिप पर चले जाते हैं। मतलब एक डेस्टिनेशन की कहानी कभी कभी एयरपोर्ट से नहीं, पोर्ट से भी शुरू होती है। आपको मौका मिले आप क्रूज हॉलीडे चूज़ करने का, तो आप वो ट्रेडिशनल फ्लाइट वाला हॉलीडे चूज़ करोगे या फिर आपको लगता है कि नहीं यार क्रूज़ एक बार ट्राई करना चाहिए। बाय द वे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, यू टेल मी अगर आपने ट्राई किया है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून्ड। बिंदास।

0: एक अजीब सा सवाल पूछूं, अगर आज आपको पता हो कि आपकी एक भी फोटो नहीं खींची जाएगी तो क्या आप फिर भी अच्छे से ड्रेसअप करके आओगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्ट है। मतलब ये सवाल एक्चुअली मेरे जैसे लोगों के लिए है भाई। मुझे पता है कि अगर आज कोई इवेंट नहीं है, आज कुछ ऐसा नहीं होने वाला जहां पर कोई यू नो ऑफिस में आ रहा है, तो मैं बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालती रेडी होने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तैयार होते हैं, मतलब होते हैं। सोचिए वो फेवरेट परफ्यूम, वो इयररिंग्स, वो कुर्ता, वो शूज़ जो आपने सिर्फ इसीलिए पहने क्योंकि आपको खुद अच्छा लगता है। हम ना फैशन को बहुत बार दूसरों की नज़र से देखते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, फोटो में कैसा लगेगा, इंस्टाग्राम पर चलेगा या नहीं। लेकिन पर्सनल स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन वो भी है जो कैमरा के बिना यू नो एग्जिस्ट करता है। सो कभी कभी हम किसी आउटफिट में सबसे अच्छे इसीलिए नहीं लगते क्योंकि वो ट्रेंडी है, बल्कि इसीलिए उसमें अच्छे लगते हैं क्योंकि खुद को अच्छा फील हो रहा था। सो आज का मिड यू नो सवाल जो है मेरा, मिड मॉर्निंग का सवाल, वो आपके लिए ये है कि आपके वार्डरोब में वो कौन सी चीज़ है जो आप सिर्फ खुद के लिए पहनते हैं, फोटो के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, बस अपने लिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

फैशन की दुनिया में एक छोटी सी चीज फिर से बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन रही है, विच इज ब्रोच। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। हाँ जी, वही ब्रोचेस जो कभी मम्मी या नानी के वार्डरोब में आपको मिला करते थे। न्यूयॉर्क फिल्म वीक के फॉल 2026 स्ट्रीट स्टाइल में फ्लोरल ब्रोचेस के साथ बोल्ड पर्पल शेड और सिल्क फ्रिंज स्कार्फ्स जो है वो सब वापस लौट के आ रहे हैं और बहुत नोटिसेबल है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्कार्फ, लेकिन ये स्कार्फ हमेशा से स्कार्फ नहीं थे, ये पहले बहुत यू नो ट्रेडिशनल चीज़ें हुआ करती थी। और फिर फैशन का ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है कि कभी ट्रेंड एक पूरा आउटफिट चेंज नहीं करता, बस एक छोटी सी चीज़ जो है वो काफ़ी रहती है। अब देखिए, एक ब्रोच जो है वो ब्लेजर पर लगाया, एक स्कार्फ जो है वो आपने आपके अटायर को चेंज कर देता है, एक बोल्ड पेयर ऑफ ग्लासेस जो है वो आपका पूरा लुक चेंज कर देते हैं, और सडनली सिंपल सा आउटफिट जो है वो पूरा मूड चेंज कर देता है। शायद इसीलिए ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको एक्स्ट्रा कहना थोड़ा सा अनफेयर है, कभी कभी एक्स्ट्रा ही पर्सनैलिटी होती है। सो यू टेल मी, अगर आपको अपने एवरीडे आउटफिट में सिर्फ एक स्टेटमेंट पीस ऐड करना हो, चाहे वो कोई बैग हो, ज्वेलरी हो, सनग्लासेस हो या स्कार्फ हो, तो आप क्या करोगे? आई पर्सनली लाइक बैग्स एंड सनग्लासेस। यू टेल मी, आपकी चॉइस क्या है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: ब्रेकफास्ट
3: से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: आजकल थ्रिलर स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और हो रही हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स की नई सीरीज जो है वो भी आई नहीं है, परिणीति चोपड़ा की है, और आई वॉज वंडरिंग कि ऐसी माँ का रोल वो प्ले कर रही हैं जो अपने मिसिंग चाइल्ड को ढूंढने में सालों लगा देती है। 24 सितंबर को ये सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स उसे बहुत प्रमोट कर रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। जब सच और शक के बीच में ना लाइन ब्लर हो जाती है ना, तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, और यही भरोसा जो है वो उस मूवी में दिखाया गया है। सो थ्रिलर का ये आइडिया जो है ये रियल लाइफ में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं कि आई ट्रस्ट यू, लेकिन ट्रस्ट ना एक्चुअली होता क्या है? किसी की बात मान लेना, उसकी इंटेंशंस पर भरोसा करना, या फिर मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस कि अगर वो गलत भी हो तो वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ना ट्रस्ट का ऑपोजिट डाउट नहीं होता, ट्रस्ट का ऑपोजिट सर्टेनिटी होती है। सो क्योंकि जिस चीज़ पर हम को एक्चुअली कम्प्लीटली समझ लेना चाहिए कि क्लेम करते हैं, शायद उसी दिन हम वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाता है। सो आप बताइए कि ट्रस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी या फिर टाइम? यू टेल मी। नंबर इज सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

सो दिस इज फॉर माई बुक लवर्स, जिन्हें हर दिन इंतजार रहता है कि मैं आज किस किताब के बारे में बताऊंगी. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है लाइफ मस्त है. आली हेजलवुड की एक पॉपुलर रोमांस नॉवल है द लव हाइपोथेसिस अब स्क्रीन पर आ रही है. फिल्म में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे स्टार्स दिखने वाले हैं और स्टोरी जो है वो ऑलिव नाम की PhD स्टूडेंट और प्रोफेसर एडम के अराउंड होगी. आली एक फेयर रिलेशनशिप जो कि धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो दिखाने वाले हैं और फिल्म जो है वो कल प्राइम वीडियो पर आ रही है. लेकिन मेरा सवाल फिल्म से थोड़ा सा अलग है, क्या बुक के कैरेक्टर्स कभी फिल्म एक्टर्स जैसे हो सकते हैं? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हीरो कैसा दिखता है, उसकी आवाज़ कैसी होगी, वो हंसता कैसे होगा, उसका रूम कैसा होगा, मतलब ऐसे इमेजिन करते हैं. फिर आती है फिल्म और डायरेक्टर कहता है कि नहीं जी, अब आप मेरी इमेजिनेशन देखिए. अब बस यहीं से जो किताब के यू नो शौकीन लोग हैं उनकी कोट लग जाती है. मतलब आप ऑनेस्टली बताइए कि आप पहले किताब पढ़ना पसंद करते हैं या पहले मूवी देखना? क्योंकि अगर किताब पहले पढ़ ली है तो मूवी के बाद एक सेंटेंस ना ऑलमोस्ट गारंटेड है. बुक में ये बेटर था, मतलब हर कोई ऐसी ही बात करता है. यू टेल मी कि आपको किताबें ज़्यादा पसंद हैं या उसके ऊपर बनी मूवीज? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: इतने सारे मैसेजेस आए कि हर कोई बोल रहा था कि यार किताबें पढ़ने के बाद ना फिर वो मूवी देखने में मज़ा नहीं आता. सो यू हैव योर ओन इमेजिनेशन जहाँ पर आप खुद इमेजिन कर लेते हो. जैसे कि एक किताब थी जिसका नाम था फॉल्ट इन आवर स्टार्स, मतलब इतनी अमेजिंग किताब है. उसके बाद उसकी हॉलीवुड में भी मूवी आई, बॉलीवुड में भी आई एंड एवरीबडी वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो स्टेशन 11 की ऑथर हैं, उनकी एक नई नॉवल आई है एग्जिट पार्टी, 15 सितंबर को ही रिलीज हुई है कुछ ही टाइम पहले. सो स्टोरी जो है वो 2031 के फ्रैक्चर्ड अमेरिका से शुरू होती है और डबल शेडो वर्ल्ड और फ्रैक्चर्ड टाइमलाइन जैसे आइडियाज एक्सप्लोर करती है. और मुझे इसका बेसिक आइडिया बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है. वॉट इफ अनदर वर्जन ऑफ योर लाइफ वॉज हैपनिंग समवेयर, आपने कोई और करियर चूज किया होता, किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए होते. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं पहले भी और ये भी किताब वैसे ही मिलती जुलती है. किसी और इंसान से मिले होते, क्या वो वर्जन ऑफ यू जो है वो ज़्यादा खुश होता. हम सब ना कभी व्हाट इफ करते ही रहते हैं. सो इसीलिए ऐसी किताबें जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती हैं. व्हाट इफ आई हैड सेड यस, व्हाट इफ आई हैड सेड नो, व्हाट इफ आई हैड स्टेड, व्हाट इफ आई हैड लेफ्ट, मतलब ऐसे सवाल बार बार मन में आते हैं. लेकिन शायद लाइफ का इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि हमें ऑल्टरनेटिव वर्जन देखने का कभी मौका ही नहीं मिलता. इसीलिए जो वर्जन हमारे पास है उसी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. अगर आपको अपनी ऑल्टरनेट लाइफ की एक सिर्फ 10 मिनट की विंडो मिल जाए ना तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइफ आप देखना चाहते हो. पर जो लाइफ आपके पास है आई एम श्योर वो बेस्ट है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

तो एक जमाने में फोन कॉल्स ना नॉर्मल होती थी, फिर टेक्सटिंग आई, फिर व्हाट्सएप, फिर वॉइस के नोट्स आ गए, और अब सिचुएशन ये है कि अगर किसी का कॉल आ जाए बिना मैसेज के तो भाई हेलो सब ठीक है ना, मतलब हम यही पूछते हैं एकदम से कैसे कॉल आ गया। हमने कम्युनिकेशन को इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि कभी कभी डायरेक्ट बात करना ही अनयूजुअल लगने लगता है। ऐसे लगता है कि यार इसका इतने टाइम बाद कॉल क्यों आ रहा है भाई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। हमने ना कम्युनिकेशन को इतना कन्वीनियंट तो बना लिया, अब वॉइस नोट का अपना एक अलग चार्म है। आप सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हो, एक्सप्रेशन फील कर सकते हो, और टाइपिंग का हेडेक भी नहीं होता। सो टेक्स्ट जो है वो सेफ है, आप सोच सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और कॉल में कोई एडिटिंग नहीं है, जो फील हुआ वही बोल दिया। शायद इसीलिए कॉल जो है वो थोड़ी ज़्यादा पर्सनल सी लगती है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे को कॉल करना पसंद नहीं करता। सो आज आई वॉज थिंकिंग कि चलो इस पर सर्वे करते हैं, आप किस टीम में हो, कॉल वाली, टेक्स्ट वाली, वॉइस नोट वाली, या वीडियो कॉल वाले। बाय द वे वीडियो कॉल वाले लोग ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लोज हो तो ही बढ़िया है, वरना हर किसी से वीडियो कॉल करना मुझे पसंद नहीं है। सो यू टेल मी, बाय द वे ये वॉइस नोट वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सारी बात एक बार में हो जाती है और समझ भी आ जाती है। सो ऑनेस्टली बताइए, नंबर इज सेम 3311063। आप भी अपने स्टाइल में बताइएगा, इफ़ यू लाइक कॉल देन यू कैन कॉल, इफ़ यू लाइक टेक्स्ट आप व्हाट्सएप कीजिए, वॉइस नोट भेजिए। अगर कोई कैन आई कॉल यू करके टेक्स्ट करे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है ये भी बताना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

0: सो फैशन का ना एक रूल समझ लीजिए, कभी किसी ट्रेंड को परमानेंटली डेड मत समझना, क्योंकि 2026 में बूट कट जीन्स फिर से कॉन्वर्सेशन में है। ये वही जीन्सेज हैं जो यू नो टाइट्स और नीज पर जाकर रिलेटिवली फिटेड होती हैं और नीचे जाकर हल्का फ्लेयर देती हैं, 90s और अर्ली 2000s की याद दिलाती हैं। बाय द वे यस्टरडे वॉज करीना कपूर्स बर्थडे और वो डेनिम इसीलिए मुझे याद आई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और फैशन का ना साइकिल ना बड़ा फनी है, एक टाइम पर हम कहते हैं कि ये तो ओल्ड फैशन है, फिर कुछ साल के बाद वही पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सेलिब्रिटीज और वही चीज़ें सडनली आपको विंटेज लगने लग जाती हैं। फैशन एक्चुअली कपड़ों से ज़्यादा मेमोरी का गेम है। किस ट्रेंड को देखते ही आपको स्कूल या कॉलेज की याद आती है, एक जीन्स एक पूरा एरा वापस आ जाता है। सो बूट कॉट जो है वो कम बैक कर रहा है या फिर नहीं, आप मुझे बताइए। बाय द वे मैंने जानवी कपूर को बहुत बार वैसे डेनिम्स में देखा है। और हाँ, जो जीन्स आपने 10 साल पहले संभाल कर रखी थी शायद वो अब विंटेज है, आउटडेटेड नहीं, आप उसे कभी भी पहन सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM एंड यू टेल मी योर फेवरेट फैशन 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर और ये है लाइफ मस्त है, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल ओवर पर song of the hour. Yeah.

0: Rasaman, Bav Rasaman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. Fresh fish on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish. Crabs. Prawns. Crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar. The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: आज का जो बुक कॉर्नर है ना, थोड़ा सा लिटरली है, मतलब यहाँ पर स्टोरी हुक बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस कीपर, जो कि 17th of September को ही रिलीज हुई है. सो ऑथर का नाम है रोज टर्मैन. सो बेसिकली ये जो लेजेंडरी नॉवल है रेबेका, उससे फैसिनेटिंग कनेक्शन बनाती है. स्टोरी में दानी नाम की एक हाउस कीपर की जो मुलाकात है वो यंग राइटर से होती है, और फिर जो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है वो इक्वली रेबेका के एक आइकॉनिक कैरेक्टर के क्रिएशन से कनेक्ट होता है. मुझे ना किताब का ये आइडिया बड़ा पसंद आया. व्हाट इफ द पर्सन यू थॉट वाज द विलन एंड हैड देयर ओन स्टोरी. हम जब कोई नॉवल पढ़ते हैं यूजुअली एक कैरेक्टर को जज करते हैं, अच्छा बुरा हीरो विलन ये सब सोच लेते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर के पास अपने वर्जन ऑफ द स्टोरी होती ही है, और शायद रियल लाइफ में भी थोड़ा ऐसा ही होता है. हर किसी की अपनी एक अलग स्टोरी है, हम उसकी एक अलग इमेज बनाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो इस किताब की जब मैं बात कर रही थी तो हम किसी को एक सीन में देखकर पूरी कहानी डिसाइड कर लेते हैं, जबकि हो सकता है कि हमें सिर्फ उनकी कहानी का एक पेज पता हो, एक चैप्टर पता हो. सो आपके हिसाब से किसी पर्सन को समझने के लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉन्टेक्स्ट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

हमारी एक सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट है इंस्टेंट रिएक्शन। मैसेज आया, फटाफट से रिप्लाई किया, किसी ने कुछ कहा आंसर कर दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया ओपिनियन दे दिया, और कभी कभी बस एक सेकेंड का पॉज मिसिंग होता है। सो इमेजिन आपको किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का आंसर देना है और उससे पहले आपको 24 घंटे मिल जाए, नो गेस में रिप्लाई, नो एक्साइटमेंट में कमिटमेंट, ना कोई यू नो हर्ट होकर डिसीजन लेना, बस लेट मी थिंक अबाउट दिस वाला टाइम है आपके पास। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, क्योंकि हर फीलिंग में ना इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई मांगता है। कभी यू नो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता, उस पर डिसीजन लेना ज़रूरी है। कभी सैडनेस सिर्फ सैडनेस नहीं होती, उस मोमेंट में लाइफ चेंजिंग कंक्लूजन निकालना ज़रूरी है। और कभी कभी जो बात रात को बहुत बड़ी लगती है, सुबह उतनी बड़ी लगती नहीं है। सो आप किस टाइप के इंसान हो, रिप्लाई बिल्कुल इंस्टेंट करने वाले, वो रिप्लाई नाउ वाले, या फिर पहले मुझे थोड़ा सोचने दो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ या करता हूँ, व्हाट्सएप करके बताइए 3311106 पर। और प्लीज़ रिप्लाई 24 घंटे के अंदर ही देना है, मतलब अभी ही करना है। सो बताइए मुझे फटाफट से, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

स्कूल में ना दोस्ती का मतलब था रोज मिलना, कॉलेज में रोज मैसेज करना, फिर अडल्टहुड आया और कभी कभी 3 महीने बाद किसी फ्रेंड से बात होती है। पहला सेंटेंस होता था कहाँ गायब हो भाई, और दूसरा मिनट में लगता था जैसे कल की ही बात है। सो क्या फ्रेंडशिप बदल गई? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चेंज डिस्टेंस हो। अडल्टहुड में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जॉब, शादी, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, आपके पास हर दिन बात करने का टाइम नहीं होता। लेकिन एक दोस्ती में कभी कभी मतलब कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन से नहीं बल्कि कंफर्ट से मेजर होता है। सो आप महीनों बाद मिलो और फिर भी कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हो जाए जहां आपने छोड़ी थी। सो आज का सवाल बहुत सा सिंपल है, आपके लिए रियल फ्रेंडशिप का साइन क्या है? रोज बात करना या हर सिचुएशन में बस अवेलेबल रहना, या फिर कितने भी गैप के बाद वो सेम कम्फर्ट वापस आ जाना? मेरे हो गया है जाने का टाइम, लेकिन जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगी कि दोस्ती बहुत ही खूबसूरत चीज़ है आपके लिए। यू नो, एक कम्फर्ट अगर कोई लेकर आता है तो वो कोई दोस्त ही हो सकता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, बस आप जाते जाते मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपके लिए दोस्ती का मतलब क्या है। आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप, नंबर है 3311063। बहुत ही ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लाइनअप किए हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

0: से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही नए कैट मीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंटरनेट में वायरल होने वाला है। सो बेसिकली इस्तांबुल में जो है एक ट्रिप में गए थे कपल जो है और वहां पे उन्होंने देखा एक कैट जो उनके सीट में आके बैठा है। जब उन्होंने खाना देने से मना कर दिया तो उस कैट का एक पेक्यूलियर रिएक्शन था जिसको फोटो क्लिक करके लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, सोशल मीडिया में डाल दिया है। काफी बढ़िया रिएक्शन वैसे। अब कैट मीम्स जो है उनका एक अलग फैन बेस है। मुझे लगता है कैट मीम्स के लिस्ट में ये वाला नया मीम भी बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज मैंने देखी, 1959 में जो बीटल कार थी उसके अंदर एक कॉफी मेकिंग मशीन भी था, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते कॉफी बना सकते थे, कॉफी का लुत्फ उठाते हुए ड्राइव कर सकते थे। और अभी के गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम की गाड़ियां कॉफी बनाती थी, और अभी की गाड़ियां जो है स्पेशली कुछ चाइनीज ईवी जो है काफी बढ़िया एक अपने हेडलाइट से प्रोजेक्टर की तरह चीजें लिख के स्क्रीन पर दिखा सकती है या फिर वॉल पर दिखा सकती है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया तरीके से इवॉल्व हो चुका है, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार गाड़ी का जो एक्चुअल पर्पस है यानी कि ड्राइव करना, वो कितना ज्यादा कम हो चुका है और कितनी ज्यादा चीजें उसमें ऐड हो चुकी हैं कन्वीनियंस के लिए और कंफर्ट के लिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी भी आप ऐसे इधर उधर देखते हो तो कुछ चीजों में एक फेस का पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करते हो? कभी कभी बादलों में, कभी स्विच बोर्ड में, कभी घुटनों में, यानी देखते वक्त कभी अगर आपको फेस दिखता है तो ये एक फॉर्म ऑफ विजुअल इल्यूजन है जिसका नाम है पेरेडोलिया। यहाँ पे ब्रेन जो है फेमिलियर पैटर्न्स को रैंडम और एम्बिगस ऑब्जेक्ट्स में जो है डिटेक्ट करता है, और इसलिए कभी कभी हमें किसी किसी रैंडम जगहों पे फेसेस दिख जाते हैं, चेहरे दिख जाते हैं। और इस चीज को फिर से मैं याद दिलाता हूँ, कहते हैं पेरेडोलिया। अगर आप ये करते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। There's something I wanna tell you, girl.

0: Radio Olive 106.3 FM.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: आई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive
1: Recharge. This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे 17 साल के एक लड़के ने इतनी बढ़िया चीज की है कि मैं क्या बताऊं आपको। सो 17 साल का एक बंदा है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्विमर है यूके में। उसने देखा कि उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके घर के आसपास के जो बच्चे हैं, वो स्विमिंग क्लासेस नहीं जा पाते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उसने फ्री में उन्हें स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया, और हंड्रेड्स ऑफ बच्चे जो हैं आजकल उसके पास जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। तो फ्री में उस बंदे ने बच्चों को एक लाइफ स्किल भी दिया है, और शायद किसी किसी को एक पैशन भी। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Sunt în number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive
0: recharge. Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
3: Olive recharge.
4: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज मैंने देखी, यानी कि लोग जो हैं आजकल आईफोन 18 प्रो आईफोन डुओ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेना है नहीं लेना है, बहुत महंगा है, उस पैसों में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आईफोन 18 प्रो या प्रो मैक्स लेने के प्राइस में थोड़ा सा पैसे और डाल के जो है आप डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर जो है जा सकते हैं। आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, इजिप्ट घूम सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो काफी अच्छे बजट में जो है ट्रैवल ऑप्शंस देते हैं। तो एक आईफोन लेना है या फिर दुनिया घूमना है, चॉइस आपकी है। और यही बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: All right, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा है। फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए। कुछ
1: ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे। वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL स्पेस अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्च में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। कभी कभी लोग कहते हैं ये भाई तुम्हारे अंदर का बच्चा बड़ा नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखा। एक डच आर्टिस्ट ने गन के शेप में दिखने वाले वुडन ब्रांचेस को कलेक्ट किया है और बहुत सारे ब्रांचेस को कलेक्ट करके उन्होंने अपना कलेक्शन जो है एक आर्ट गैलरी में दिखाया है। और जब मैंने कलेक्शन देखा तो मैं भी सोचा कि यार मैं भी ये करता था, मगर मेरे ब्रांचेस तो मम्मी ने उठा के फेंक दिए थे। अगर उन्होंने नहीं फेंके होते तो शायद आज मैं भी वही कलेक्शन दिखा देता। मगर कोई बात नहीं भाई, कोई गल नहीं। यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive 106.3 FM.
1: तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes ka video speech upload kijiye 22nd September tak on www.thequatartalks.com par. Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

हेलो, आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

ये टाटा बाबाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एप्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो

यार छोड़ के जाने वो लिरिक्स में भूल जाती हूँ यार, लेकिन आ गई हूँ मैं जी सुनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल 5:09।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी
3: टू लर्न
2: टू प्ले
3: टू ग्रो
2: मजराती.
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए.

0: पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardust evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बात करूंगी क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, मैं कहीं सुन रही हूँ कि दादी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाड़े नाल 5:22:17 स्टूडियो की घड़ी पे। देखो यार, बिग बॉस आजकल चल रहा है और बिग बॉस का हमको ये भी पता है कि भाई 3 महीने जो भी इस घर में रहता है कोई फोन अलाउड नहीं होता है। लेकिन अब ये 24 घंटे आपको पता है कि आप एक एप्लीकेशन पे इसको देख सकते हो। मतलब हम लोग जो हैं वो जो कट वाला एडिटेड वाला 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, लेकिन फिर भी आप एक वेबसाइट है जहां पर जो है देख सकते हो 24 घंटे की घर में क्या चल रहा है। उसमें से एक क्लिप जो है किसी ने वायरल की है जिसमें जो ईशा रिखी है जो कि बादशाह की एक्स वाइफ है वो फोन पे बात कर रही है, क्लियरली वो चीज़ फोन पे दिख रही है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस तो स्क्रिप्टेड है यार।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: Zabardust evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिरयानी खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: Mere sapno ki rani kab aayegi tu?
1: Are rani ka to pata nahi, par legendary Kishore Kumar and Mukesh ke wahi evergreen gaane live Doha zarur aa rahe hain. Yes Doha, get ready for Dharohar Suron ki Amar Kahani. For the first time, India's finest tribute artist Mukhtar Shah, Alok Kadre and Priyanka Mitra are performing live with Grand Orchestra.
3: September 24th at Holiday Inn Doha. Retro vibes, pure nostalgia and 1,000 memories.
1: Log on to Q-Tickets or www.a2zetc.com or apni tickets aaj hi book kare. Dharohar miss mat karna.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

भाई ये क्या चल रहा है यार, अलग लेवल का सीन। लेकिन एक न्यूज जो थी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, रेंट अ गरबा पार्टनर फॉर 500 to 6.5। जी हाँ, इसके लिए भाई साहब अहमदाबाद में ये चीज चल रही है कि भाई आप गरबा पार्टनर जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको रेंट कर सकते हो। तो पुलिस ने वार्निंग जो है वो कर दी कि भाई ये चीज जो है वो गलत है। ऑफकोर्स यार बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है गरबा खेलने के लिए, डजंट मीन कि आप उसको रेंट करके जाओगे। जब आप गरबा, मैंने एक चीज देखी है कि जब आप गरबा खेलने जाते हो ना तो ऐसी वाइब बन जाती है कि इतने सारे लोग हैं, अगर आपके पास कोई नहीं भी है ना तो वो लाइन से ऐसा पूरा चक्कर बना के गरबा खेलते हैं कि आपको किसी की जरूरत जो है ना वो महसूस ही नहीं होती है। और बहुत ही कमाल का, तो अभी तो रिसेंटली मैं अहमदाबाद जाके आई हूँ, अभी से तैयारियां जो है वो गरबा वगैरह की स्टार्ट हो चुकी हैं। सो या बड़ा ही माहौल सेट है। 5:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चला रही हूँ। सुंदरी रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

ह्यूमिडिटी ना पिछले दो तीन दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट कल भी जब मैं ऑफिस से बाहर निकली, भाई साहब ये चश्मे वालों को सबसे पहले पता लग जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी और कैसे चल रही है। भाई दो दिन से तो काफी ज्यादा बुरे हाल है और आज भी ह्यूमिडिटी जो है वो है। जब तक ये नहीं जाती तब तक ठंड नहीं आती, तो ठंड आएगी तो फिर मजे आएंगे, बिल्कुल इस गाने की तरह।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास Jackman की power packed range, heavy trucks, tippers, trailers और boom trucks. दमदार performance और भरोसा सिर्फ Carmel के साथ. Visit Carmel Group now.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर legendary किशोर कुमार and मुकेश के वही evergreen गाने live Doha जरूर आ रहे हैं. Yes Doha, get ready for धरोहर सुरों की अमर कहानी. For the first time India's finest tribute artist Mukhtar Shah, Alok Kadre and Priyanka Mitra are performing live with grand Orchestra.
0: September 24th at Holiday Inn Doha. Retro vibes, pure nostalgia and 1,000 memories.
2: Log on to Q Tickets or www.a2zetc.com or apni tickets aaj hi book kare. Dharohar miss mat karna.
3: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's top most Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening

0: कंफर्ट शो होता है राइट, जो कि आप कभी भी देखो कभी भी चला लो, आपका मन जो है वो लग जाता है जब आपको नहीं समझ लग रहा है कि कब क्या देखना है। 6:20:55 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है। सो इस तरह से मेरा एक शो है वैम्पायर डायरीज। सो वैम्पायर डायरीज जो है मेरा एक कंफर्ट शो है, नाम सुनने में काफी ज्यादा भयंकर लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला शो है। सो मैंने कल से उसको वापस देखना स्टार्ट किया जब मुझे कुछ नहीं समझ लगता कि क्या देखना है और क्या करना है। सो या I love this Vampire Diaries। ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आपका कोई कंफर्ट शो है जो कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, 3311063 पर आप मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो जरूर देखते हैं। सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। cool song.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

Benji. स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं एंड ऑलिव रिवाइंड में आज कौन सा गाना होगा? उसके साथ साथ

नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं और अगर आप चैट कर रहे हो किसी जेंजी से और उसने आपको HMU लिख के भेज दिया, ठीक है, सो मतलब तो उसका मतलब ये है कि हिट मी अप, यानी कि आप किसी को मैसेज करने के लिए जो है वो बोल रहे हो. सो या HMU ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हिट मी अप. सो या यू हिट मी अप. ओके, मैं वेट कर रही हूँ 3311063 पर. सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हैप्पीनेस रेजोनेंस सब लोगों को होता है, लेकिन थोड़ी सी हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है। सो ये हैप्पीनेस लाउंज के वीडियोस आपने हमारे सोशल मीडिया पे देखे होंगे, राइट? सो हैप्पीनेस लाउंज का ये है कि अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो ठीक है, HL जी या हैप्पीनेस लाउंज का अगर आप हमें मैसेज करते हैं, सो आपके ऑफिस या फिर आपकी कंपनी में हमारी टीम जो है वो आती है और हम मस्त वाले आपको काम से हटा के गेम्स खेलते हैं, थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा दिन डेडलाइंस, मेल्स, मीटिंग्स, क्लाइंट, ये सारी चीज़ों में फंसे रहते हो। लेकिन वो जो हैप्पीनेस लाउंज का वो जो टाइम होता है ना, 1-2 घंटे, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और हर जगह पे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी या फिर आपके ऑफिस में हम लोग आए, हमारी टीम आए और अपन फन करें, खाएं भी और मज़े करें, थोड़ी सी ऐश ही करें, है ना, तो आप हमें अभी कभी मैसेज कर सकते हो हैप्पीनेस लाउंज यानी कि HL और अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 3311063 पर, और फिर देखते हैं कि आप में से अब अगले ऑफिस हम कहां पे जाते हैं। कल भी हम एक जगह जाने वाले हैं लेकिन उसका वीडियो बहुत ही जल्दी सामने आएगा। सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो विंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: 106.3 FM.
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 26. Communicate, connect and conquer.
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
3: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड

0: जाके वापस आती हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बजकर 31:40 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। बाहर चांद नजर आ रहा है क्या? मेरा चांद मुझे आया है नजर। सिर्फ एक ही चीज से इश्क है, वो है चांद। प्यार के चक्कर में बहुत सारे कांड हो जाते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: लाइफ में एक सीख जो है वो जरूर ले लेना। क्या होता है कि दो लोगों के झगड़े में जब एक तीसरा इंसान जब आता है ना, तो उस टाइम पे वो चीज़ें तो सॉर्ट करने की कोशिश करता है और फिर वो अच्छा भी होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब दो लोगों के बीच में जब झगड़ा चल रहा होता है ना, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सामने वाला जो है वो बुरा बन जाता है। जो बातें उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपने बोली हैं, है ना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर सामने वाला जो है वो बुरा बन जाता है। यार एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, क्योंकि अगर आपने टांग अड़ाई तो आपकी टांग टूट सकती है यार। 7:32:40 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूँ, तो बस अपना नाम टाइप करके रखिएगा और मैं आपका नाम बोलने वाली हूँ। और आने वाले गानों में से एक और गाना बहुत ही खूबसूरत है यार, बाहर का मौसम क्या कह रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना यार, बस ये ठीक हो जाए उसके बाद तो सब सही है यार।

ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਐਂਡ क्विकली अब नेम गेम खेलने वाली आप लोगों के साथ। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो क्विकली आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए, व्हाट्सएप करिए और मैं आपका नाम अभी यू नो रेडियो पर लेने वाली हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। आसमा, नावीद जी, सैमन जी, साजिद जी, थैंक यू सो मच। प्रिंसन जी, थैंक यू सो मच। नवीन जी, थैंक यू सो मच। पंकज जी, थैंक यू सो मच। श्री जी, थैंक यू सो मच। अदील जी, थैंक यू सो मच। आपके मैसेज के लिए हाय मत लिखिए दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। सैद ज़ादा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आविज जी, अहमद खान जी, आदिल जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम क्यों लिख के भेज रहे हैं दोस्त मुझे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, क्विकली बताइए। आशिक हसन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिहान जी, थैंक यू सो मच। फुरकान अली फ्रॉम लखनऊ जी, थैंक यू सो मच। किरण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शेख जी, थैंक यू सो मच। नेहा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। भूपिंदर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। समीरा नशवा, आई होप मैं नाम सही बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों, फटाफट से अपना नाम लिख दो, फिर मत कहना कि मेरा नाम जो है वो नहीं लिया। राजीव जी, थैंक यू सो मच। जुल्फी जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। मलिक जी, थैंक यू सो मच। अब्रार जी, थैंक यू सो मच। नजीम उल्ला जी, थैंक यू सो मच। जमील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है। रेहा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा, अब थैंक यू बोल दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
2: अरमान मलिक.
3: हमें नंबर वन.
1: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, हमें नंबर वन.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: तेरी रेडियो ऑलिव कोर के तेरी ये चाहिए बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: करते उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया को भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे तो हमारे बहुत सारे फैंस हैं, सो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो नहीं किया है और हमारे यूट्यूब के चैनल को फॉलो नहीं किया है और हमारी वेबसाइट है olive.qa पे अगर आप जाएंगे तो लाइव हमें वहाँ पे आप सुन भी सकते हैं। हमारी पूरी टीम है वहाँ पे, आप देख सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। पॉडकास्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज भी होती हैं और हमारी वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले इवेंट्स के बारे में। अगर यू नो आप इनकेस रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है आपको पता लग सकेगा एंड बहुत सारे यू नो हमारी वेबसाइट पे जब कोई भी इवेंट होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है एंड उसके साथ साथ आप हमारे जो है एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी आप अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना तो आप हमारी एप्लीकेशन को ऑन करके हमको सुन सकते हैं।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: सुनते रहिए रेडियो ओलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

बहुत ही प्यारा गाना अपना नाम नहीं लिखा लेकिन बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है। 15 मिनट पहले कह रहे हैं कि कोई गाना प्ले हुआ था, वो गाना कौन सा है? देखो यार, 8 बजे से जो मैंने गाने प्ले किए हैं वो है मिलके बैठांगे, वो नहीं गाना है फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। उसके बाद सावरे गाना प्ले किया था फैंटम फिल्म से, उसके बाद मैंने प्ले किया था मेरे बिना फ्रॉम द मूवी क्रूक, ओके। उसके बाद गुजारा बागी 4 से प्ले किया था, और तुमसे बेहतर फिर प्ले किया था सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एंड उसके बाद हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, एंड क्या यही प्यार है, ये वाला गाना। आई होप इनमें से वो गाना हो जो कि आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको लिख के भेज दिया लेकिन इनको अभी क्लिक नहीं हो रहा, नहीं समझ लग रहा, तो गाने इतने सारे दोस्त प्ले होते हैं तो वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तो आई होप इसमें से आपको कोई ना कोई गाना जो है वो मिल जाए। बाकी के गाने, बाकी की बातें कल करेंगे शाम को 5 बजे, सो जबरदस्त इवनिंग्स में। और खाने पीने रो, ऐश कर दे रो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas

इनमें की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।